0: pilihan dari Dona.
1: Ayo beruntung kayak
2: gini. Ini coba.
0: Pak ini saya mau
3: करो
4: बस चलो भाई चल तू क्या चल
5: आते हैं अपन क्या करेंगे भारत का रोटी खाने का
6: हां मरी जा
5: मरी जा।